0: पौड़ी बड़ी हम वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग बिरंग नेक न जपन करतबा जी अंदर जियो सब जाला सब तेरे वस तेरा कर पला तेरा कर आनंद वधाई तुद कर माण मत दे जे अपना आप जर सर्ब कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता।
1: श्लोक
2: पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दाई दाया के ले सगल जगत।

सब रख कुटुंब नाल कारज आप सवार आना सो प्रभ सदा सभाल पीड़ मोकलाई कीतियाना सब रख कुटुंब नाल कारज आप सवार आना सो प्रभ सदा सभाल प्रभ मात पिता कंठ लाइंदा लौड़े बाल कपाल दयाल होए सब जी अजंत्र हर नानक नदर निहाल महला पंजवा वेण तुद होर जे मंगना सिर दुखा का दुख देह नाम संतोखिया पुत्र मन की भुख गौरवण तिण हरिया कीतिया नानक किया मनुख पौड़ी सो सादा तार मन हो ना विसरै कड़ी न मोहत चसा तिस बिन न सरै अंतर बाहर संग के आको लोक करें जिस पत रखे आप

तन जियो तेह को जग में, तन जियो तेह को जग में, मुखते हर चित में जुद विचार मुख

गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा नानक दासन दास तुदया गै बिनवतास लो।
1: पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवसरा दुदाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदू।

रंग अनेक न जपन करतबा तियांद्र जियों सबके जनला सब तेरा वस तेरा घर भला तेरा घर आनंद वधाई तुत कर मार महत्ता ते जपना सरकला भरपूर।

माता थर्त महत देव सदात दोए दाई दया केले सगल जगत चंगियाईया बुद्धियाईया।

चित अमृतर सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रखे आए आयत। देख देख फतेह बिरद की पैद पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसी जी के बोल वाले बोलो जीवा दान दान दान दाना सिर दान दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे मुंगे जी को जुगिया टल।

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहेओ। सब तोहे बखान्यो।

गोविंद दास तोहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती। मान वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया। शब्दो ता गावहो हरि केरा मान जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब बिसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा घर ता तेरा सब किछ है। जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडे आईया। कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै। घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। आनद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भए सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया।

डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तौ जरे मरे सिद पाइया। लीनो हाथ संदौरा, गगन दमामा बाजे ओ परे ओ।

काऊ। खेत जो मांड्यो सूरमां, अब जूझन को दाव। सूरा सो पहचानिया, जो लरा दीन के हेता। पुरजा काट मराय, कब हूँ ना छाड़ खेत। जब बाण लागेओ, तब रोस जागेओ। करंग लय कमाणंग, अनंग बाण तानंग। कबीर मोहे मरने का चाओ है, मराओ तहर कै द्वार। मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तख्त। सिर साहा पात साहु, निहचल चौर छत। डिठे सबे थाव, नहीं तुद जेहया। बद्दो हो पुरख विदाता, ता तू सोहया। वसदे सगने अपार, अनूप राम दास पुर। हर हां नानक कस मल जाहे, नाया रामदास सार। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रख हो सरनाई। अंदर सच्चा ने हो लाया, प्रीतम अपने तन मन होए निहाल। जा गुर देखा सामने, सुकहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु का। जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसाम दी। नूर अरसहो कुरसहो चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते सा। माल जन्म जन्म दी कटिया।

रविदास आस लग जीवा चिर पायो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछुड़े थे माधव एहो जन्म।

0: तेरा मर्तबा, रंग बरंगे नेक न जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरे वास तेरा घर भला, तेरे घर आनंद वधाई तुद घर, मान महत्ता ते जे अपना आप जर, सर्ब कला परिपूर्ण संजत कथा, नानक दास दास बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगे आईया बुरे आईया।

0: मन ते कब हूँ ना टरों।
1: हाँ में आव गुण परी एक गुण नाही, अमृत शाड बिखे बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सोत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलांत जाम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। सो कहौ टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाई, दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुर सहौ चटिया, तुद डिठे सच्चे पात साह, माल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पात साहु, सिर साहा दैसाहु, जिस पास बैठे आसोही है, सब ना दा वेसाहु, सज्जन सच्चा पात साहु, सिर साहा दैसाहु, जिस पास बैठे आसोही है, सब ना दा वेसाहु।

तन्ना गोपाल तेरा आरता जो जान तुमरी भगत करंते तिन के काज सवारता गोपाल तेरा आरता जो जान तुमरी भगत करंते तिन के काज सवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कीओ हमरा खुशी करे नित जियो।

पौड़ी आपीने आप साजियो आपीने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए करिया संडिठो चाओ दाता करताब तू तुझ देवे करे फसाओ तू जानो हिसाब से दे लै सजिंद कवाओ करिया सुन डिठो चाओ करिया सुन डिठो चाओ।

भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफ्त विस्माद सालाह विस्माद उज्जड़ विस्माद राहा।

0: पहला कढ़िया सभ्य गोपियां पहर कन गोपाल गहने पवन पाणी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल महला पहला
1: वायन चले नचन गुर पैर हिलायन फिरन सिर उड़ावा चाटे पाए वेखे लोग हसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप छाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान काम सीता राजे राम निरपाओ निरंकार सचनाम जाका किया सकल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रैन जना मंचाओ सिखी सिख्या गुरु विचार नदरी कर्म गाय पार को लू चरखा चक्की चक थाल बरूले बहुत अनंत।

0: उतना पहकाए कार जल थल जिया पुरिया लोहा आकार आया कार ओए जे आखे सो तू है जाने तिना पे तेरी सार नानक भक्ता भुख सलान सच नाम आधार सदानंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाशार महला पहला
1: मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार घर भांडे टांकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे ग्यार।

0: और हमें चखना चाक महला पहला
1: लिख लिख पड़े आती तकड़े बहुत ही तो पवे आती तो लवे बहुत फेंकिया दे दुख दिया सहवे जी अपना किया।

0: सब जग चलनहार, कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर, नानक वखाणे बेनती तुद बार कूड़ो कूड़ महला पहला
1: सच ता।

0: पहला पहला
1: शाम कहे से तंबर स्वामी सच में आचे साच रहे सब को सच समावे रे कहे रहे आ भरपूर राम नाम दे महसूर नाय लगे प्राचत जाए नानक को मुखंतर पाहे जुज में।

सो तिन सत गुर सुख पाए कृपा तारी जी, नाम की बड़ाई दई गुर रामदास का। सो तिन सत गुर सुख पाए।

ध्यान अंतर्गत तेज पुंज त्यों लोक प्रगास है। देखत दरस भटक भरम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगास है। सेवक सिख सदायत लुबत अल समूह ज्यो कुसम सुबास है। विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो।

तीन पान परपुरो सोई, आपन सरस कियो ना जगत कोई, आपने आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गंधर्व खोजंत फिरे, अविनाशी अचल अजूनी संभो पुरखोत्तम अपार परे, करण कारण समरथ सदा सोई, सर्व जी मन ते आयो श्री।

0: नर तु प्रहलाद सुदम पुप भगत हर के जोगन अम्बरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पनंग तिनको अवतार पयो कल्पेंतर जस जगतर पर छायो सिर गुरु रामदास जय जय जग मह तै हर परम पद पायो सिर गुरु रामदास जयो जय जग मह तै हर परम पद पायो।
1: मनसाकार सिमर अंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जू तनंग बाचाकार समरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जू खिणंग कर्म कर तो दर्श परस पारस सार बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो।
2: जेह सतगुर सिमरंत नायन के तिमर मिटा खिन जेह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जेह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जेह सतगुर सिमरंत रिद सिद नव निध पावै सोई रामदास गुर बालपन मिल संगत तन तन करो जेह सतगुर लग प्रभ पाईया सो सतगुर सिमरो नरो।
3: जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड़ियो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख

0: जीव अंगद अंग संग नानक गुरे तिव गुरे अमरदास के गुर रामदास जीव अंगद अंग संग नानक गुरे तिव गुरे अमरदास के गुर रामदास।
1: नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नीव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही ना जाई सोडी सिष्ट सकल तारन को अब गुर रामदास को मिली बड़ाई सोडी सिष्ट सकल तारन को

0: मोह मल बेवस कियो, काम केश पछाड़ियो, क्रोध खंड प्रचंड, लोभ अपमान सो झाड़ियो, जन्म काल कर जोर, हुक्म जो है सो मन, पाव सागर बंधियो, सिख तारे सो प्रसन्न, सिर हाथ पत सचो तखत, जोग भोग संजोत बल, गुरु रामदास सत सल पण, तू अटल राज अपग दल,
1: तू सतगुर चों जुगी आपे आपे परमेश्वर, सुर नर साधिक सिद्ध सिख से

अहनिश सहज सुभाए दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूर यार सोह कुरसो चटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोई सबना दावे साहो सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोई सबना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी राम काली महला पहला सूरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोक सुने पत चोली मंगण कहताई पीखिया नाम पड़े सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोक सुने पत चोली मंगण कहताई पीखिया नाम पड़े बाबा गोरख जागे

एत गौण विसर सद साधक आर जोगे जंगम पीर पुरस बहुतेर जेतन मिला तकीरत आखा सेव करे कागद लून रह कृत संग पानी कमल रहा

चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले। बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान। बबेक दान विसाह दान पुरुषा दान। दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बोंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची। मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणियां दे माण नेताणियां दे ताण। नेउटियां दी ओट धन धन। श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान। सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास। भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ। जिन्हां जिन्हां गुरमुखां प्रेमियां वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है तिन्हां दी अरदास। समूह संगत अते टहलियां दी अरदास। सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों। सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना। शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर। कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है। दार प्रवान होवे परवान होया प्रसाद। संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो। सुख होवे नाम चेते आवे। सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवान। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

पौड़ी साहिब हुए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी। सो सेवक सेवा कर जिसनो हुक्म बनाए सी। हुक्म नहीं होवे प्रमाणता कसमे का महल पाए सी। कसमे पावे सो करे मरहो चिद्या सो फल पाए सी। ता दरगे पैदा जाए सी।

तरफ है अठ सर तीर्थ जे नहावे उतरे नाही मैं। जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते पले संसार तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार।